ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके आमाल जाये हो गए और हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे।

0: और मैं अपने बाद अपने भाई बंधुओं से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा।
1: यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रदिया।
0: जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार उसको खुश अतवार बनाइयो।

उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं।

0: तो खुदा जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने के लिए जल्दी न किया करो, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे।
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا
1: وَإِذْ

क्या ये बात उन लोगों के लिए मूजिबे हिदायत न हुई कि हम उनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।

0: और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता।
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح

बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो, और रात की सात अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब जहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ।

और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से बहरामंद किया है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए।
1: अलैका या सैयदी,
0: यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
1: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन।
0: FM 92.6।
2: वक्फे के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। उसके बाद जुम्मा और सेंचर की दरमियानी रात को कुरैश ने यहूद के पास ये पैगाम भेजा कि हमारा कयाम किसी साजगार और मौजू जगह पर नहीं है, घोड़े और ऊंट मर रहे हैं, लिहाजा इधर से आप लोग और उधर से हम लोग उठें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दें। लेकिन यहूद ने जवाब में कहलाया कि आज सेंचर का दिन है और आप जानते हैं कि हमसे पहले जिन लोगों ने इस दिन के बारे में हुक्म शरीयत की खिलाफ वर्जी की थी उन्हें कैसे अजाब से दोचार होना पड़ा था। इलावजा आप लोग जब तक अपने कुछ आदमी हमें बतौर यरगमाल ना दे दें हम लड़ाई में शरीक ना होंगे। कासिद जब ये जवाब लेकर वापस आए तो कुरैश और गुदफान ने कहा वल्लाह नईम ने सच ही कहा था। चुनाचे उन्होंने यहूद को कहला भेजा कि खुदा की कसम हम आपको कोई आदमी न देंगे, बस आप लोग हमारे साथ ही निकल पड़े और दोनों तरफ से मोहम्मद पर हल्ला बोल दिया जाए। ये सुनकर कुरैजा ने बहम कहा वल्लाह नईम ने हमसे सच ही कहा था। इस तरह दोनों फरीक का एतमाद एक दूसरे से उठ गया, उनकी सफ़ें फूट पड़ी और उनके हौसले टूट गए। इसी दौरान मुसलमान अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे थे ए अल्लाह हमारी पर्दापोशी फरमा और हमें खतरात से मामून कर दे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे थे ए अल्लाह किताब उतारने वाले और जल्द हिसाब लेने वाले इन लश्करों को शिकस्त दे, ए अल्लाह उन्हें शिकस्त दे और झंझोड़ कर रख दे। बिलाखिर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की दुआएं सुन ली। चुनाचे मुशरिकीन की सफ़ें फूट पड़ी और बददिली और पस्त हिम्मती की सरायत कर जाने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर तुंद हवाओं का तूफान भेज दिया जिसने उनके खैमे उखेड़ दिए, हांडियां उलट दी, तुनाबों की खूंटियां उखाड़ दी, किसी चीज को करार ना रहा और उसके साथ ही फरिश्तों का लश्कर भेज दिया जिसने उन्हें हिला डाला और उनके दिलों में रोब और खौफ डाल दिया। इसी सर्द और कड़कड़ाती हुई रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुफार की खबर लाने के लिए भेजा। मौसूफ उनके महाज में पहुंचे तो वहां ठीक यही हालत बपा थी और मुशरिकीन वापसी के लिए तैयार हो चुके थे। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिदमत नबवी में वापस आकर उनकी रवानगी की इतला दी। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की तो देखा कि मैदान साफ है, अल्लाह ने दुश्मन को किसी खैर के हुसूल का मौका दिए बगैर उसके गैज़ो गज़ब समेत वापस कर दिया है और उनसे जंग के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी हो गया है। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अपने लश्कर को इज्जत बख्शी, अपने बंदे की मदद फरमाई और अकेले ही सारे लश्करों को शिकस्त दी। चुनाचे उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए। ग़ज़वा खंदक सही तरीन कौल के मुताबिक शवाल में पेश आया था और मुशरिकीन एक माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का महासरा जारी रखा था। तमाम माखज पर मजमूई नजर डालने से मालूम होता है के मुहासरे का आगाज शवाल में हुआ था और खात्मा ज़ी क़दा में। इब्ने साद का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज खंदक से वापस हुए बुध का दिन था और ज़ी क़दा के खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। जंग हिजाब दर हकीकत नुकसान जान और माल की जंग न थी बल्कि एहसाब की जंग थी। इसमें कोई खून रेज मार का पेश नहीं आया लेकिन फिर भी ये इस्लामी तारीख की एक फैसला कुन जंग थी। चुनाचे उसके नतीजे में मुशरिकीन के हौसले टूट गए और ये वाजे हो गया कि अरब की कोई भी कुव्वत मुसलमानों की इस छोटी सी ताकत को जो मदीने में नशोनुमा पा रही है खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि जंग एहजाब में जितनी बड़ी ताकत फराहम हो गई थी उससे बड़ी ताकत फराहम करना अरबों के बस की बात ना थी। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहजाब की वापसी के बाद फरमाया अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई ना करेंगे, अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा। सामईन, ये था गजवाए खंदक का हवाल। वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। तब तक के लिए कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।
3: कीप काम एंड लिसन टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया। UCP की दुनिया।

0: अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum and welcome to the Faculty Hour program. Today we have some amazing guests with us, जिनके साथ हम इंग्लिश लर्निंग को लेके मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट गेस्ट हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू देम। एट द फर्स्ट वी हैव मैम तैयबा राना। शी इज़ डेप्यूटी मैनेजर एट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। इनका एक्सपीरियंस इंग्लिश लर्निंग और मैनेजमेंट के फ्यूजन को समझने में बहुत मदद देगा। एंड नेक्स्ट वी हैव मैम शीबा सुल्तान। शी इज़ लेक्चरर एट UCP एंड टीम लीड राइटिंग सपोर्ट सेंटर। सो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड लर्न अलॉट फ्रॉम दैट। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन मैम, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन इंग्लिश लर्निंग को लेके क्या हो सकता है और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं?
3: अच्छा, थैंक यू हबीबा फॉर इनवाइटिंग मी एंड आस्किंग माय ओपिनियन अबाउट दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को जो लर्निंग का तरीका स्कूल्स और कॉलेजेस में है वो उस लेवल का नहीं है कि जैसे कि इंग्लिश बच्चों को पढ़नी चाहिए। इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है जिसमें कि हम मुख्तलिफ स्किल्स में मास्टरी हासिल करते हैं, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो हम कहीं सोचते ही नहीं है ना, क्योंकि वी डोंट अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, एंड उनकी वो आदत डेवलप हो चुकी होती है जब तक कि वो हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो बिल्कुल एक लेक्चर स्टाइल से पढ़ के आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम उनको एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। आपको मैं बताऊँ, और ये आपके लिए बहुत शायद नई बात भी हो लेकिन नहीं भी हो क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी पढ़ रही हैं उस तरह से। हमने ELC में, जबकि डॉक्टर हबीब काजी साहब ने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने इंग्लिश को एक मॉडर्न जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको एक मॉडर्न फुटिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है। हम लोग जो हैं वो एक कैम्ब्रिज का जो है वो डिज़ाइंड सिलेबस या कोर्स पैक आप उसे कह लें, हम वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड और हम उसमें इन स्किल्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया इनके ऊपर फोकस करते हैं और हम बच्चों को क्लास में लिसनिंग करवाते हैं। थैंकफुली वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन UCP, हमारे पास ऑडियो वीडियो, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ क्लास में अवेलेबल है और प्रोजेक्टर्स हैं, मींस वी कैन हैव अ गुड यूज़ ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर वी हैव। ओके, तो हम बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ क्लास में करवाते हैं। इसके अलावा जो है हमारी तमाम क्लासें जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड हैं, स्टूडेंट्स जो हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वो खुद मतलब इट इज़ मोर ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड एंड लेस ऑफ टीचर सेंटर्ड, जबकि जो हमारा एक

0: ट्रेडिशनल सिस्टम है, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि उसमें क्या है कि वो तो एक लेक्चर स्टाइल है कि टीचर्स आते हैं और वो जो भी टॉपिक होता है वो बच्चों को क्लास में करवा के बस बोर्ड का यूज़ किया एंड देन दे कम आउट ऑफ और स्टेप आउट ऑफ द क्लास. बट हम क्या करते हैं, वी गाइड द स्टूडेंट्स, वी टेल देम दैट हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ एंड हाउ दे आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट देयर लैंग्वेज और देयर लैंग्वेज लर्निंग इन टू द एक्टिविटीज एंड देन दे देमसेल्व्स डू इट. तो ये एक हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हमें इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बच्चे इसको लर्न कर रहे हैं और उससे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, होपफुली वो फील कर रहे हैं. और
1: मैम, जैसे कि आपने बोला कि पीछे से वो एक टिपिकल जो काफ़ी अरसे से लर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जब इधर आते हैं तो इनको एकदम बिल्कुल नया इन्वायरमेंट मिलता है इंग्लिश लर्निंग को लेके, तो समटाइम स्टूडेंट्स को उस चीज़ में ढलने में टाइम भी लगता है. तो टीचर्स किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करते हैं कि स्टूडेंट्स उस इन्वायरमेंट को अच्छे से कोप अप कर सकें?
0: अच्छा, हमारा चूँकि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वी टेक इनटू अकाउंट कि ये कैसे होगा. उसमें ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज़, पेयर एक्टिविटीज़ और उससे हेल्प लेते हैं, और चूँकि ये सारा सिस्टम ही जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड पेयर एक्टिविटीज़ और डिस्कशन पे बेस करता है. तो उसमें ये है कि चूँकि स्टूडेंट्स दे आर कम्फर्टेबल विद देयर फेलो स्टूडेंट्स, विद देयर पीयर्स, और पीयर चेकिंग जो है एक बहुत हमारा एक ख़ास आप कह लें कि वो है. उसमें बच्चों को ये डर नहीं होता कि टीचर हमें जो है वो कोई पिनलाइज करेगी किसी चीज़ के ऊपर या करेगा, ठीक है. तो वो एक अब एक इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सीखते हैं, ठीक है. डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम वो जो है वो यूज टू हो जाते हैं और वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं. इट टेक्स टाइम, बट विद इन 4-5 weeks दे गेट इन टू दैट सिस्टम और हम फिर उसके मुताबिक उनको चलाते हैं. और हमने उसमें एक अपनी प्रोग्रेशन भी रखी हुई है, यानी अच्छा. कि जो इंग्लिश वन है उसमें हम उनको बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं और जो है वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, मींस ग्रामर और सब चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं ना, उन्होंने तो चलते रहना है. उसके बाद जो इंग्लिश टू में वो जाते हैं तो वो फिर ऐसे राइटिंग, एटलीस्ट 5 paragraph ऐसे को वो जो है वो करते हैं, उसमें मास्टरी लेने की कोशिश करते हैं. एंड देन वी हैव डिजाइंड आर इंग्लिश 3 इन सच अ वे जो कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज है, ESP. वो हम फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं हर फैकल्टी के मुताबिक. अगर कोई मीडिया की फैकल्टी का बच्चा है तो उसका तमाम जो कंटेंट है वो मीडिया रिलेटेड है. अगर लॉ की फैकल्टी का बच्चा है तो द कंटेंट इज लॉ रिलेटेड. अगर IT का है तो वो IT से रिलेटेड है. तो फिर वो जो है हम उनको तैयार करते हैं कि वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वो लैंग्वेज की जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे यूज कर सकते हैं.
1: आई एम हैप्पी टू हियर दैट के इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट्स के उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए. मैम शिबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि UCP एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है रूरल एरिया से होता है, जैसे सिंध हो गया, साउथर्न पंजाब. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स कैसे इफ़ेक्टिव टास्क दे सकते हैं कि उनको वो चीज़ें इजी लगें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होते हैं.
2: जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के सारे हिस्सों से आते हैं और उसमें हम यही स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एरर करेक्शन को स्टूडेंट के ऊपर रेप्रिमांड नहीं करते, कि स्टूडेंट्स को हम कंफर्टेबल रखते हैं. और UCP का जनरल इन्वायरमेंट भी इस तरह का है कि वी अप्रिशिएट द वेरियस कल्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कल्चरल डे मनाया जाता है, हर स्टूडेंट का जो जिस खित्ते से वो आए हैं उनके कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है. तो क्लासरूम में भी हमारा ये एक स्टाइल है कि अगर जो स्टूडेंट जिस भी एक्सेंट में बात करता है या उनकी जैसी भी प्रोनंसिएशन है, हम उसको इनक्रेज करते हैं कि वो उसको जो है वो बेशक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश की तरफ लेके चलें, लेकिन देर इज़ नो कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स. वी इनक्रेज आर students to speak with their accents, we encourage them to improve their pronunciation or rather to take their pronunciation towards standardized English with the passage of time. तो एकदम से हम उनको नहीं बम्बार्ड कर देते चीज़ों के साथ, हम उनको उन्हीं के स्टाइल में लेके चलते हैं. और ये जैसे कि मैम ने बताया है कि वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज. तो इवन हमारी जो एंड ऑफ सेमेस्टर की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होती हैं वो ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं. सो वी गिव अ चॉइस टू द स्टूडेंट्स कि आप सोलो प्रेजेंटेशन करना चाहें तो कर लें, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि बच्चों को एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है.
1: यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैम से क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे. तब तक सुनते रहिए FM 92.6.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is 92.6.
2: वेलकम बैक लिसनर्स, एंड आई एम योर होस्ट उम्मे हबीबा। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मैम तैयबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि हमें बुक रीडिंग की हॉबी डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो बुक रीडिंग लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो गया ना, तो उस चीज़ को हम अपने लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं?
3: अच्छा, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ें, और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप जो है न्यूज़पेपर जो हैं वो सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और न्यूज़पेपर्स में, और स्पेशली उनके जो संडे मैगजीन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आता है हर तरह का, ठीक है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और हर तरह का, जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इंटरेस्ट की उनकी टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा आप बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप गुड रीड्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किंडल पे जा सकते हैं, आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस तरह कंफर्टेबल हैं, डेफिनेटली आजकल की जनरेशन उस तरह कंफर्टेबल है, तो वो। और इसमें बस बेसिक चीज़ ये है कि आप बेशक एक पेज पढ़ें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जी पूरी पूरी वो। और फिर दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ जो कि हम यूनिवर्सिटी में भी है, और यूनिवर्सिटी हमारा जो फैकल्टी है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हमने रीडिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन रीडिंग सर्कल्स में आएँ। उसमें ये होता है कि कोई एक बुक चूज कर ली जाती है और उसके चैप्टर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि उस पर फिर डिस्कशन होती है, और किसी भी राइटर को भी बुलाया जाता है समटाइम्स, और टीचर्स तो होते हैं, तो एक ज़बरदस्त सी डिस्कशन जब होती है तो बच्चों का खुद ब खुद स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिवेलप हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑल दीज एवेन्यूज।
2: तो मैम शीबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन को किस तरह इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं?
4: देखिए, जो हम बात करें रीडिंग की, राइटिंग की, तो ये एक्चुअली दीज आर यू कैन कॉल देम लाइक एक्सरसाइजेस फॉर योर ब्रेन। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, राइट? कि जो बंदा जिम जाएगा
2: जी,
4: उन्हीं के जो मसल्स हैं वो टोन होंगे, बाकी जो जिम नहीं जाएंगे उनके मसल्स टोन नहीं होंगे, राइट? तो अगर हम एफर्ट करेंगे, स्टोरी टेलिंग के एफर्ट करेंगे, स्टोरी रीडिंग के एफर्ट्स करेंगे, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर अप होते हैं और वो डिवेलप होते हैं। स्टोरी टेलिंग एक डिसिप्लिन है, उसमें ये होता है कि लोग एक तरीके से एक लय में एक नैरेटिव बताते हैं बैठ के। और जो हमारा करंट जो लिटरेचर है वो शुरू ही स्टोरी टेलिंग से हुआ था। जो पुरानी, जो जैसे आपने सुना होगा पिशावर में है किस्सा खानी बाज़ार, तो उसमें ये होता था कि पुराने जो ट्रेडर्स होते थे वो तजारत करते हुए जब ट्रैवल करते थे, तो वो शाम के टाइम उन्होंने बैठना होता था, उन्होंने आराम करना होता, तो बैठते थे और आग जली होती थी क्योंकि मौसम ठंडा जो होता था, एंड दे वो टेल स्टोरीज। तो वो कोई आम कहानियाँ नहीं होती थी, वो पुराने वॉर्स की कहानियाँ और ग्रैंड टेल्स, और जो पुरानी फिर नज़में जो बनी, जिसको अंग्रेज़ी में हम ओड्स कहते हैं तो, और एलिजीज़ कहते हैं, वो लंबी कहानियाँ हैं जो पुराने लोग बताते बताते इस मतलब एक पॉइंट पे आए कि वो उसको किसी ने लिखना शुरू किया। सो स्टोरी टेलिंग में आपका कल्चर प्रिजर्व होता है, स्टोरी टेलिंग में आपकी वैल्यूज़ प्रिजर्व होती हैं, और स्टोरी टेलिंग में जो बता रहा होता है कहानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बयानियाँ करने की उसकी प्रैक्टिस होती है। सो ये एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, और ये आपके हर फील्ड में यूज़ होता है। देखिए, अगर आप लॉ में, जब आपका मूट कॉम्पिटिशन होता है, जब एक वकील जो है वो अपना केस लड़ रहा होता है, तो दे एम्प्लॉय स्टोरी टेलिंग। आप मार्केटिंग में जाएँ, जो बिजनेस के लोग हैं, तो पिच जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी and selling your product. So this is storytelling. ये इसके फवायद हैं और ये इसकी थोड़ी सी background है।
2: मैम, जैसे कि हमें English proficiency test आजकल देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि जो English proficiency test है वो वाकई ही एक person की abilities को accurately reflect करता है कि उसका कितना potential है?
4: ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि जी टेस्ट ग्रेड इम्पॉर्टेंट है या काबिलियत इम्पॉर्टेंट है, क्या ग्रेड इंसान की काबिलियत को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, क्या वो सारी कंडीशंस जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट की होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं या नहीं करती हैं, राइट? लेकिन उसमें जो एजुकेशन की जो थियरी है या फिलॉसफी है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो एक तराजू चाहिए ना किसी चीज़ को मेजर करने के लिए. तो टेस्ट एक वे टू मेजर, एक तराजू है जिसके ऊपर आप रख के देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो इन कंडीशंस के अंदर बैठ के क्या इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं. बेशक के वो कंडीशंस अननेचुरल होती हैं, टेस्ट का स्ट्रेस होता है, राइट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी ट्रेट सामने आते हैं कि उनमें कितनी रिजिलियंस है, उनका कितना डिसिप्लिन है, उनकी इवन टू सर्टेन एक्सटेंट मेमोरी रिटेंशन कितनी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है. तो टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑफकोर्स उसके ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट की बिना पे एक इंसान की पूरी काबिलियत को तो नहीं मेजर कर सकते, बट इट इज़ क्वाइट वी कैन से हेफ्टी वे टू मेजर अ स्टूडेंट्स पोटेंशियल.
2: तो मैम शीबा, देखें जैसे हम देखते हैं आजकल, वैसे तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो एज अ प्रोफेशनल स्टडी वो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. वैसे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एज अ प्रोफेशन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए किस तरह रहता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स एज अ प्रोफेशन इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस देंगी?
4: एज अ प्रोफेशन देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के हर कोने में यूज़ में, पूरी दुनिया की जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश लैंग्वेज इतनी हैवी हुई इस तरह से कि जिनकी वो लैंग्वेज थी उन्होंने उसके अंदर सारी चीज़ें समेट ली, राइट. आपने कोई रेसिपी पढ़नी है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, आपने कोई मैनुअल देखना है किसी भी प्रोडक्ट का वो सबसे पहले इंग्लिश में है, आपने कोई भी लॉ बनाना है वो आप जाके तो इंग्लिश में ही आ जाके वो बनता है. सो इंग्लिश का जो वेट है वो अभी तक कम नहीं हुआ. जो लोग इंग्लिश में एक कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी या एक्सीलेंस रखते हैं, ये एक बहुत हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द नॉलेज दैट इज़ अवेलेबल इन द लैंग्वेज. सो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज़ करते हैं एज देयर प्रोफेशन, दे एंड अप हैविंग अ एडवांटेज एनी हाउ. इसको आप किसी भी फील्ड में ले लें, आप इंग्लिश की डिग्री करते हैं, लोग बिजनेस में जाते हैं, लोग साइकोलॉजी में जाते हैं, लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं,
2: उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनली स्कोप बन जाता है
3: और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं. और जो ये बात है ना, हम अभी ELC के हवाले से कर रहे थे, इसमें ये है कि हमने जहाँ पे और हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे हम हमारा बहुत रोल है कि हम बहुत सी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स बट टू टीचर्स एज वेल. ठीक है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है LIC जो है UCP में और CPE उसके थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है. तो मैं चूंकि मैनेजमेंट में हूँ तो मैं थोड़ा सा उधर की बात भी करूँगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल दो और ये भी बताता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज की, जो आप पहले क्वेश्चन मिस शीबा से कर रही थी, वो इम्पोर्टेंस है तो हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है. अगर ये इम्पोर्टेंस ना हो तो हमें इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए ना, बिकॉज लैंग्वेज इट्सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. और फिर इसके अलावा हमने पिछले सेमेस्टर में CP के ही प्लेटफॉर्म से जो कि UCP में है, उससे हमने जो है IELTS और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज भी ऑफर किए थे. वो पेड थे लेकिन वो भी हमने ऑफर किए.
2: वो तो देखा जाता है ना कि जैसे IELTS का सिस्टम भी बेस करता है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो UCP के अंदर भी जो एक कोर्स पैक चलाया जा रहा है वो भी उसी पे बेस करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बाद में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा आसानी होती है. तो मैम तैयबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी या कोई ऐसा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ.
3: अच्छा, मैं अभी रिसेंटली बड़ा खुश हुई, मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनकी एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी. तो और मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, और अब वो BS करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं UCP में, तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ही वॉज सो शाई इवन टू स्पीक समथिंग और राइट, और लैंग्वेज इतनी आप कह लें कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी कि वो ही ऑलवेज सेज टू मी कि आप प्लीज़ उर्दू में क्वेश्चन ले लिया करें, क्योंकि आई एम वेरी अ बिट स्ट्रिक्ट कि मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना क्लास में और ये वो इस तरह। तो मतलब वो उस तरह के लेवल का बच्चा था कि एक तो शाये भी बहुत, एक वो उसको ना वो सारा। और अब जब बीएस करने के बाद उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी और मुझे कहा कि आप इस पे रिव्यू दें अपना, तो इट वाज रियली मुझे फील हुआ कि शायद कहीं मैंने भी कुछ मेहनत तो उसी की है डेफिनेटली कि वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद यूसीपी ने और मैंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ तक लेके आने में। तो ये मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ।
2: एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा जाता है, पढ़ाई से हटके वो आपको जिंदगी के मामलात में भी बहुत सी गाइडेंस देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी में ऐसे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि अपनी बाहर की जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैम शीबा सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग।
4: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स शायरी करते हैं, दे राइट स्टोरीज, दे आर एबल टू रिप्रेजेंट अस। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए थे एक मूड कंपटीशन में इस्लामाबाद में एंड दे वर एबल टू विन द कंपटीशन। और हम लोग खुद भी अपने टीचर्स का ही प्रोडक्ट है ना, तो आई थिंक के यूसीपी में हमारी बहुत कोशिश है एंड आई रियली अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट ऑफ यूसीपी। एक बहुत ही कंडक्टिव एनवायरनमेंट है जिसमें लोग पढ़ते हैं और एन्जॉयमेंट भी होती है, और इसमें एक मेंटोरशिप हमारा चलता है, बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग करते हैं। और इस तरह से ऑफकोर्स देखें स्टडीज़ बेशक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो या कोई भी और डिसिप्लिन हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ईजी तो है ही नहीं, अगर ईजी होती तो फिर इसका कोई ऑनर नहीं होता। आखिरी दिन ग्रेजुएशन पे जब स्टूडेंट्स को उनका गाउन होता है, उनका मोटर बोर्ड होता है, उनको जब डिग्री दी जाती है तो वो एक ऑनर है। तो वो ऑनर आसानी, कोई भी ऑनर आसानी से नहीं मिलता। तो मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन वी ट्राई आर लेवल बेस्ट एट यूसीपी स्पेशली टू प्रोवाइड आर स्टूडेंट्स विद एवरी फैसिलिटी। वी हैव द जिम, वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर एंड वी हैव वंडरफुल कैफेटेरियाज के स्टूडेंट्स का एक हेल्दी इन्वायरमेंट में वो नर्चर ग्रो कर सके।
2: जी जी, जैसे कि देखा जाता है कि यूसीपी का जो कैरियर सर्वे सेंटर है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है इस फील्ड में कि बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो प्रोफेशनली इन हो जाते हैं उन सारी चीजों में। जी लिसनर्स, तो ये था आज का शो। हमारे साथ दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट थी, मैम तैयबा राना एंड मैम शीबा सुल्तान। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, एज अ प्रोफेशन आप इंग्लिश को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। मजीद इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
1: खामोश भी हम हैं सुबह, हम हैं सबर, हम ही सजा, हम कातिब भी हम दास्तां।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

प्रीति गानों की, ख्वाजा साहब रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद थे और हारमोनियम, जिसको के मौसीकी के जबान में बजाने वाले गाने वाले मौसीकार पेटी कहते हैं, पेटी वाजा भी कहते हैं पंजाबी में, वाजा, ठीक है, वो वाजा बजाने वाला कौन था? सुन के आप हैरान होंगे, वाजा बजाने वाले को जब हीर गंवानी थी बैकग्राउंड में ख्वाजा साहब ने, तो उन्होंने वाजे वाले की जब दस्तस देखी रीड्स के ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, तो साथ साथ उसको गुनगुनाते भी देखा, तो ख्वाजा साहब ने कहा, मुंडिया तू क्यों नहीं गा लेंदा? उन्हें कहा, जिगर तुसी समझ दे तो मैं गा लेना वा। ख्वाजा साहब ने कहा, बिल्कुल, ए गाना तेरे अलावा और कोई नहीं गाएगा, ए तू ही गाएगा। कहते हैं इससे पहले दो तीन और चांसेस लोगों को दिए गए, उनमें नामवर गाने वाले भी थे। ख्वाजा साहब ने एक इंटरव्यू में बताया, मैडम नूर जहान ने जिक्र किया, क्योंकि इसकी वो फिल्म साज भी थी, ठीक है जी, और इसमें गाने वाली भी थी, उनके शोहर नामदार एजाज साहब जो थे इसके हीरो भी थे। और इसी के बाद एक वाकया यहाँ बताता चलूं, जेन से महव ना हो जाए, कि इसकी जो हीरोइन थी उसका नाम था फिरदौस बेगम, वो वाकई हीर लगती थी, बड़ी बुलंद कामत, बड़ी खूबसूरत गिलाफी आंखें, और पंजाबी में इतनी शाइस्तगी से, इतनी नरमाहट से मैंने डायलॉग बोलते आज तक किसी को सुना ही नहीं है। उसी दौरान उनका इश्क चल पड़ा एजाज साहब से, और ख्वाजा साहब ने, सॉरी इससे पहले ऋषि दत्त, दोबारा वापस आऊंगा, ख्वाजा साहब ने जब जिक्र कर रहा था मैं उस पेटी वाले का, हारमोनियम वाले का, जब उसने गाया तो यकीन कीजिए उसने कमाल का गाया, और वो कोई और नहीं था, उसका नाम था गुलाम अली। ये वही गुलाम अली हैं जिनको अल्लाह ताला ने शोहरत बख्शी गालिब की फारसी कलाम, जिसका तर्जुमा सूफी गुलाम उस्ताद तबस्सुम ने पंजाबी में किया था, और वो गाना था मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार, गुलाम अली वो है। लेकिन मैं जो गाना बताना चाह रहा हूँ आपको, बादशाह सफदर हुसैन ने तरतीब दिया था, वो था नी चंबे दिए बंद कलिए तैनू जेड़े वेले रब ने बनाया, ते सोचा विच आप पै गया दूजा चंद किधरों चढ़ाया। तो सामीन, मैंने ये गाने आपके गोश गुजार किए हैं, मैं नहीं चाहता, खुद तो मैं इतने मशहूर, इतने खूबसूरत गानों से लुत्फंदोज हूँ और आपको इससे महरूम रखूँ। आइए चलते हैं, इस गाने को आपके कानों में रस घोलने के लिए लगाते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और इस प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनकता हुआ।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। WhatsApp पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में WhatsApp को रिपोर्ट करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: लोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर एसएमएस करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या एसएमएस के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। पीटी

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो एक अहद है, एक दौर है पूरा।
1: 20वीं सदी के आखिरी हिस्से को अपनी आवाज़ के सहर में जकड़ने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ का जादू किसी की रूह पर असरअंदाज होने के लिए किसी मखसूस ज़बान का मोहताज नहीं। साज़ और आवाज़ से नुसरत की रूह और दिल की हम आहंगी के बायस सुनने वाले उनकी आवाज़ के सहर में खो जाया करते थे।

0: ये अल्लाह की अता होती है और गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है और लोगों से प्यार कर रहे हैं।
1: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान कवाली के मैदान में कदम रखते ही जान चुके थे कि कवाली

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजुर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

कवाल की हैसियत से 125 ऑडियो एल्बम नुसरत फतेह अली खान का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने वाला शायद दूर दूर तक कोई नहीं।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: कंट्रोल, आवाज आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
1: आवाज भी और
2: धड़कन भी सन्न हो गया।
0: The nets fly over and out.

तक। जिंदगी को जीने से जिंदगी को पाने तक। उस कबा के उठने से उस कबा के खुलने तक। आंख के तमाजत से होंठ की हरारत तक। गाल पे लगा गाजा होंठ पे लगी लाली खुद ब खुद पिघलने दे। खुद ब खुद पिघलने से खुद ब खुद पिघलने तक। खुद ब खुद पिघलने दे। हाथ की लकीरों से रथ जगों के तीरों से और आगे जाने दे। और आगे जाने से और आगे जाने दे।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum and welcome to the Faculty Hour program. Today we have some amazing guests with us, जिनके साथ हम English learning को लेके myths और facts के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी English learning को कैसे improve कर सकते हैं. So stay tuned with us. आज हमारे साथ कुछ expert guests हैं. So let me introduce to them. At the first we have Ma'am Tayyaba Rana. She is Deputy Manager at English Language Center. इनका एक्सपीरियंस इंग्लिश लर्निंग और मैनेजमेंट के फ्यूजन को समझने में बहुत मदद देगा। एंड नेक्स्ट वी हैव मैम शीबा सुल्तान। शी इज़ लेक्चरर एट यूसीपी एंड टीम लीड राइटिंग सपोर्ट सेंटर। सो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड लर्न अलॉट फ्रॉम दैट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन मैम, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इंग्लिश लर्निंग को लेके क्या हो सकता है और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं?
3: अच्छा, थैंक यू हबीबा फॉर इनवाइटिंग मी एंड आस्किंग माय ओपिनियन अबाउट दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को जो लर्निंग का तरीका स्कूल्स और कॉलेजेस में है वो उस लेवल का नहीं है कि जैसे कि इंग्लिश बच्चों को पढ़नी चाहिए। इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है जिसमें कि हम मुख्तलिफ स्किल्स में मास्टरी हासिल करते हैं।

0: स्टूडेंट के ऊपर रेप्रिमांड नहीं करते कि स्टूडेंट्स को हम कंफर्टेबल रखते हैं, और यूसीबी का जनरल एनवायरनमेंट भी इस तरह का है कि वी अप्रिशिएट द वेरियस कल्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कल्चरल डे मनाया जाता है, हर स्टूडेंट का जो जिस खित्ते से वो आए हैं उनके कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है. तो क्लासरूम में भी हमारा ये एक स्टाइल है कि अगर जो स्टूडेंट जिस भी एक्सेंट में बात करता है या उनकी जैसी भी प्रोनंसिएशन है, हम उसको इनक्रेज करते हैं कि वो उसको जो है वो बेशक स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश की तरफ लेके चलें, लेकिन देर इज़ नो कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स. वी इनकरेज आर स्टूडेंट्स टू स्पीक विद देयर एक्सेंट्स, वी इनकरेज देम टू इम्प्रूव देयर प्रोनंसिएशन और रादर टू टेक देयर प्रोनंसिएशन टूवर्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो एकदम से हम उनको नहीं बम्बार्ड कर देते चीज़ों के साथ, हम उनको उन्हीं के स्टाइल में लेके चलते हैं. और ये जैसे कि मैम ने बताया है कि वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, तो इवन हमारी जो एंड ऑफ सेमेस्टर की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस होती हैं वो ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं. सो वी गिव अ चॉइस टू द स्टूडेंट्स कि आप सोलो प्रेजेंटेशन करना चाहें तो कर लें, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि बच्चों को एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है.
1: यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैम से क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे. तब तक सुनते रहिए FM 92.6.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, एंड आई एम योर होस्ट उम्मे हबीबा। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मैम तैयबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि हमें बुक रीडिंग की हॉबी डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो बुक रीडिंग लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो गया ना, तो उस चीज़ को हम अपने लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं?
4: अच्छा, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ें, और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप जो है न्यूज़पेपर जो है वो सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और न्यूज़पेपर्स में, और स्पेशली उनके जो संडे मैगजीन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आता है हर तरह का, ठीक है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और हर तरह का, जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इंटरेस्ट की उनकी टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप गुड रीड्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किंडल पे जा सकते हैं, आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस तरह कंफर्टेबल हैं, डेफिनेटली आजकल की जनरेशन उस तरह कंफर्टेबल है, तो वो। और इसमें बस बेसिक चीज़ ये है कि आप बेशक एक पेज पढ़ें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जी पूरी वो। और फिर दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ जो कि हम यूनिवर्सिटी में भी है, और यूनिवर्सिटी हमारा जो फैकल्टी है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हमने रीडिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन रीडिंग सर्कल्स में आए। उसमें ये होता है कि कोई एक बुक चूज कर ली जाती है और उसके चैप्टर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि उस पर फिर डिस्कशन होती है, और किसी भी राइटर को भी बुलाया जाता है समटाइम्स, और टीचर्स तो होते हैं, तो एक ज़बरदस्त सी डिस्कशन जब होती है तो बच्चों का खुद ब खुद स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिवेलप हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑल दीज एवेन्यूज।
3: तो मैम शीबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन को किस तरह इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं?
5: देखिए, जो हम बात करें रीडिंग की, राइटिंग की, तो ये एक्चुअली दीज आर यू कैन कॉल देम लाइक एक्सरसाइजेस फॉर योर ब्रेन। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, राइट? कि जो बंदा जिम जाएगा
3: जी,
5: उन्हीं के जो मसल्स हैं वो टोन होंगे, बाकी जो जिम नहीं जाएंगे उनके मसल्स टोन नहीं होंगे, राइट? तो अगर हम एफर्ट करेंगे, स्टोरी टेलिंग के एफर्ट करेंगे, स्टोरी रीडिंग के एफर्ट्स करेंगे, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर अप होते हैं और वो डिवेलप होते हैं। स्टोरी टेलिंग एक डिसिप्लिन है, उसमें ये होता है कि लोग एक तरीके से एक लय में एक नैरेटिव बताते हैं बैठ के। और जो हमारा करंट जो लिटरेचर है वो शुरू ही स्टोरी टेलिंग से हुआ था। जो पुरानी, जो जैसे आपने सुना होगा पिशावर में है किस्सा खानी बाज़ार, तो उसमें ये होता था कि पुराने जो ट्रेडर्स होते थे वो तजारत करते हुए जब ट्रैवल करते थे, तो वो शाम के टाइम उन्होंने बैठना होता था, उन्होंने आराम करना होता था, तो बैठते थे और आग जली होती थी क्योंकि मौसम ठंडा जो होता था, एंड दे वो टेल स्टोरीज। तो वो कोई आम कहानियाँ नहीं होती थी, वो पुराने वॉर्स की कहानियाँ और ग्रैंड टेल्स, और जो पुरानी फिर नज़में जो बनी, जिसको अंग्रेज़ी में हम ओड्स कहते हैं तो, और एलिजीज कहते हैं, वो लंबी कहानियाँ हैं जो पुराने लोग बताते बताते इस मतलब एक पॉइंट पे आए कि वो उसको किसी ने लिखना शुरू किया। सो स्टोरी टेलिंग में आपका कल्चर प्रिजर्व होता है, स्टोरी टेलिंग में आपकी वैल्यूज़ प्रिजर्व होती हैं, और स्टोरी टेलिंग में जो बता रहा होता है कहानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बयानिया करने के लिए उसकी प्रैक्टिस होती है। सो ये एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, और ये आपके हर फील्ड में यूज़ होता है। देखें, अगर आप लॉ में, जब आपका मूट कॉम्पिटिशन होता है, जब एक वकील जो है वो अपना केस लड़ रहा होता है, तो दे एम्प्लॉय स्टोरी टेलिंग। आप मार्केटिंग में जाएँ, जो बिजनेस के लोग हैं, तो पिच जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी and selling your product. So this is storytelling. ये इसके फवायद हैं और ये इसकी थोड़ी सी background है।
3: मैम, जैसे कि हमें English proficiency test आजकल देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि जो English proficiency test है वो वाकई ही एक person की abilities को accurately reflect करता है कि उसका कितना potential है?
5: ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि जी टेस्ट ग्रेड इम्पॉर्टेंट है या काबिलियत इम्पॉर्टेंट है, क्या ग्रेड इंसान की काबिलियत को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, क्या वो सारी कंडीशंस जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट की होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं या नहीं करती हैं, राइट? लेकिन उसमें जो एजुकेशन की जो थियोरी है या फिलॉसफी है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो एक तराजू चाहिए ना किसी चीज को मेजर करने के लिए. तो टेस्ट एक वे टू मेजर, एक तराजू है जिसके ऊपर आप रख के देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो इन कंडीशंस के अंदर बैठ के क्या इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं. बेशक के वो कंडीशंस अननेचुरल होती हैं, टेस्ट का स्ट्रेस होता है, राइट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आते हैं कि उनमें कितनी रिजिलियंस है, उनका कितना डिसिप्लिन है, उनकी इवन टू सर्टेन एक्सटेंट मेमोरी रिटेंशन कितनी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है. तो टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑफकोर्स उसके ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट की बिना पे एक इंसान की पूरी काबिलियत को तो नहीं मेजर कर सकते, बट इट इज़ क्वाइट वी कैन से हेफ्टी वे टू मेजर अ स्टूडेंट्स पोटेंशियल.
3: तो मैम शीबा, देखें जैसे हम देखते हैं आजकल, वैसे तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो एज अ प्रोफेशनल स्टडी वो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. वैसे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ रहे हैं. तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एज अ प्रोफेशन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए किस तरह रहता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स एज अ प्रोफेशन इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस देंगी?
5: एज अ प्रोफेशन देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के हर कोने में यूज़ में, पूरी दुनिया की जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश लैंग्वेज इतनी हैवी हुई इस तरह से कि जिनकी वो लैंग्वेज थी उन्होंने उसके अंदर सारी चीज़ें समेट ली, राइट. आपने कोई रेसिपी पढ़नी है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, आपने कोई मैनुअल देखना है किसी भी प्रोडक्ट का वो सबसे पहले इंग्लिश में है, आपने कोई भी लॉ बनाना है वो आप जाके तो इंग्लिश में ही आ जाके वो बनता है. सो इंग्लिश का जो वेट है वो अभी तक कम नहीं हुआ. जो लोग इंग्लिश में एक कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी या एक्सीलेंस रखते हैं, ये एक बहुत हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन द लैंग्वेज. सो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज करते हैं एज देयर प्रोफेशन, दे एंड अप हैविंग अ एडवांटेज एनी हाउ. इसको आप किसी भी फील्ड में ले लें, आप इंग्लिश की डिग्री करते हैं, लोग बिजनेस में जाते हैं, लोग साइकोलॉजी में जाते हैं, लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं,
3: उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनली स्कोप बन जाता है
4: लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं. और जो ये बात है ना, हम अभी ELC के हवाले से कर रहे थे, इसमें ये है कि हमने जहाँ पे और हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे हम हमारा बहुत रोल है कि हम बहुत सी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स बट टू टीचर्स एज वेल. ठीक है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है LIC जो है UCP में और CPE उसके थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है. तो मैं चूंकि मैनेजमेंट में हूँ तो मैं थोड़ा सा उधर की बात भी करूँगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल्दो और ये भी बताता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज की, जो आप पहले क्वेश्चन मिस शीबा से कर रही थी, वो इम्पोर्टेंस है तो हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है. अगर ये इम्पोर्टेंस ना हो तो हमें इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए ना, बिकॉज लैंग्वेज इट्सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. और फिर इसके अलावा हमने पिछले सेमेस्टर में CP के ही प्लेटफॉर्म से, जो कि UCP में है, उससे हमने जो है IELTS और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज भी ऑफर किए थे. वो पेड थे लेकिन वो भी हमने ऑफर किए.
3: वो तो देखा जाता है ना कि जैसे IELTS का सिस्टम भी बेस करता है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो UCP के अंदर भी जो एक कोर्स पैक चलाया जा रहा है वो भी उसी पे बेस करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बाद में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा आसानी होती है.
4: यस, यू आर राइट.
3: तो मैम तैयबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी या कोई ऐसा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ.
4: अच्छा, मैं अभी रिसेंटली बड़ा खुश हुई, मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनकी एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी. तो और मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, और अब वो BS करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं UCP में, तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ही वॉज सो शाई इवन टू स्पीक समथिंग और राइट, और लैंग्वेज इतनी आप कह लें कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी कि वो ही ऑलवेज सेज टू मी कि आप प्लीज उर्दू में क्वेश्चन ले लिया करें, क्योंकि आई एम वेरी अ बिट स्ट्रिक्ट कि मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना क्लास में और ये वो इस तरह। तो मतलब वो उस तरह के लेवल का बच्चा था कि एक तो शाये भी बहुत, एक वो उसको ना वो सारा। और अब जब बीएस करने के बाद उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी और मुझे कहा कि आप इस पे रिव्यू दें अपना, तो इट वाज रियली मुझे फील हुआ कि शायद कहीं मैंने भी कुछ मेहनत तो उसी की है डेफिनेटली कि वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद यूसीपी ने और मैंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ तक लेके आने में। तो ये मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ।
3: एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा जाता है, पढ़ाई से हटके वो आपको जिंदगी के मामलात में भी बहुत सी गाइडेंस देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी में ऐसे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि अपनी बाहर की जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैम शीबा सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग।
5: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स शायरी करते हैं, दे राइट स्टोरीज, दे आर एबल टू रिप्रेजेंट अस। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए थे एक मूड कंपटीशन में इस्लामाबाद में एंड दे वर एबल टू विन द कंपटीशन। और हम लोग खुद भी अपने टीचर्स का ही प्रोडक्ट है ना, तो आई थिंक यूसीपी में हमारी बहुत कोशिश है एंड आई रियली अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट ऑफ यूसीपी। एक बहुत ही कंडक्टिव एनवायरनमेंट है जिसमें लोग पढ़ते हैं और एन्जॉयमेंट भी होती है, और इसमें एक मेंटोरशिप हमारा चलता है, बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग करते हैं। और इस तरह से ऑफकोर्स देखें स्टडीज़ बेशक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो या कोई भी और डिसिप्लिन हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ईजी तो है ही नहीं, अगर ईजी होती तो फिर इसका कोई ऑनर नहीं होता। आखिरी दिन ग्रेजुएशन पे जब स्टूडेंट्स को उनका गाउन होता है, उनका मोटर बोर्ड होता है, उनको जब डिग्री दी जाती है तो वो एक ऑनर है। तो वो ऑनर आसानी, कोई भी ऑनर आसानी से नहीं मिलता। तो मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन वी ट्राई आर लेवल बेस्ट एट यूसीपी स्पेशली टू प्रोवाइड आर स्टूडेंट्स विद एवरी फैसिलिटी। वी हैव द जिम, वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर एंड वी हैव वंडरफुल कैफेटेरियाज के स्टूडेंट्स का एक हेल्दी एनवायरनमेंट में वो नर्चर एंड ग्रो कर सके।
3: जी जी, जैसे कि देखा जाता है कि यूसीपी का जो कैरियर सर्वे सेंटर है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है इस फील्ड में कि बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो प्रोफेशनली इन हो जाते हैं उन सारी चीजों में। जी लिसनर्स, तो ये था आज का शो। हमारे साथ दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट थी, मैम तैयबा राना एंड मैम शीबा सुल्तान। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, एज अ प्रोफेशन आप इंग्लिश को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। मजीद इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
1: खामोश भी हम हैं सुबह, हम हैं सबर, हम ही सजा, हम कातिब भी हम दास्तां।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Duniya।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।